0: चाड पर्व में यूरोपेन्स प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन अभी पाने 3 वर्ष एसी 1 टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने 1 जोड़ी को लगी बाली टूर यूरोपेन्स घर मात्र रंगाउन सपना बनी
1: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा गुनासो @oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: कार्यक्रम से नोरबेताइन विश्व श्रृंखला तीन बेला छ गयो छलायो हरेक बुधवार निन्नबे 38 बजे ये कैमना से नोरबेता खेबलमो छलायो हरेक बुधवार निन्नबे 38 बजे ये कैमना माझरी कैमना से नोरबेता में खेमो कैमना भावना दे सोर पीमो तले विषया तायो भावना जी ये यो अधिकार मो अंतिमारी से नोरबेता ये मरे जीवा तायो थुमरे धन्यवाद पीमारी फेरी अर्को श्रृंखला रे अर्को थुइना से नोरबेता पोइमारी खबा माचते बालो कार्यक्रम रे नरे बालो प्रविधि ते क्या साथ पीबा प्राविधिक थो दिलो दे धन्यवाद पीमारी खुशी माया तमिशियो बिदा किमो रेडियो मर्सेंगदी 95 मेगाहर्ज ये दिन दिलत ओ छाजलो ग्यासजे और छे
1: सेर्बेता सब्दरी थेरीछु से नोरबेता खुशी माया दिबालो।

0: क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट 7 महीना को लागी मात्र ₹5,700 साथ ही क्यारो टीवी ऐप में पाउनु होस 200 भन्दा बढी HD र SDTV चैनल हरू वाईफाई 6 सहित को सुपर फास्ट इंटरनेट र IPTV अब क्लासिक टेक में आज ही जड़ान गर्नु होस कॉल गर्नु होस 9709184147 शर्त हरू लागू हुने छन्
1: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM